0: प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगे देलिनी,
0: बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति। सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे।
0: पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो,
1: ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नाही।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।

Welcome back, friends. So, Charichi, more Friends, Amara Puratana Beda, O Purana Amukusikechi, Basu Dahiba, Kutumbakam. Era Ortho Kibola, Sobdarisimitanwe, Barang, Ihamo, Jibana Sairi. जेतेबेले विश्वरे दूरता बढ़ुछि सेतेबेले आम देश भारत केवल प्रेम ओ भ्रातृत्वर सेतु निर्माण करिछि आमे केवल निज पई नहे पूरा विश्वर कल्याण पई सर्वे भवन्तु सुखिनर कामना करिछु ए विश्वव्यापी परिवारर भावना हि आमको देछि स्वतंत्र परिचय जेउठी आमे समस्तंकु निजर मने करी स्वागत करी थाओ।

0: ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବଡ଼ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଘଡ଼ିରେ ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ, ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश

0: वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मूज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।

0: सर्वोच्च तापमात्रा आज 34 डिग्री सेल्सियस रही पारे आ सर्वनिम्न 37 डिग्री सेल्सियस रही पारे सेंती तो देखिबा को गले कटक भुवनेश्वर आ आखपाख अंचल रे ओडिसा रो प्राय अंचल रे आज वर्षा हबार पूरा पूरा चांस अछि पूरा पूरा जेहेतु चांस अछि हल्का फुल्का वर्षा वर्तमान आरंभ भी हे सारी छि जदि आपण बाहर को देखुथिबे तबे पूरा कळा हांडिया मेघ जेंति आसी जाय सकाळटा जेमिति अंधार हो जाइछि सेमती पहलिया पूरा पाग हो सारे तेज दिन सारा आज हालुका वर्षा हबार संभावना रही सहित आज रातिर मध्य वर्षा कंटिन्यू रही पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली तेणु हल्का फुल्का वर्षा अच्छी किंतु आपन को टिके गुळगुळी अनुभूत हो पारे घर भितर तेणु आपण माने निहाती भावरे निजर पूरा पूरा जत्न नियंतु पानी भल भाव पियंतु आउ जेतबेळे भी आपण बाहर को जाउछंती ना सेतबेळे आपण छत्ता बा रेनकोट साथी निहाती रखंतु काहेकि ना वर्षा जेहेतु अच्छी छत्ता रेनकोट न नेकि गले आपण ओदा हेबे आउ बिल्कुल भी आपण के देह ठीक रहिबनी तेणुकरि सुस्थ रहिबा पई निजर पूरा केयर नियंतु वायुमंडल रे आज आद्रता माने ह्यूमिडिटी रही पारे गुळगुळी आपण को अनुभूत हो पारे तेणु शरीर रु जलीय अंश कमेबा पूर्वरु ही आपण भल भाबरे पानी पियंतु ताकि आपणकर जलीय अंश शरीर रे ठीक रहिबो वर्षा जोगु रास्ता खसड़ा हो पारे वर्षा जोगु रास्ता घाट रे पानी मध्य जमी थाई पारे तेणु जेतेबेळे भी घर बाहर छंती ना निज काम को जाउछंती गाड़ी धीरे चलांतु आ सतर्कता रे सहित चलांतु ता सहित आपनको कहि रखे आज नुआ सकाळटी बहुत ही खास नुआ सकाळ आज नुआ सकाळ हेउछि जुलाई मास 14 तारीख रो सकाळ एवं आज दिन रे आमे पालन करूछे बास्तिल दिवस ता सहित नमस्ते दिवस जहाँ को भी आज देखुछंती ना सकाळ सकाळ समस्त नमस्ते बोली कहंती निहाती नमस्कार बोली कहंतु आज नमस्ते दिवस को आमे समस्ते पालन करूछे एवं ता सहित आज नुआ सकाळ रे आपण को पाई बहुत किछि नुआ वार्ता रहिछि किछि नुआ प्रेरणा रहिछि आज सकाळ रे तो बहुत किछि खास कथा रहिछि किंतु जदि आपण सकाळ जल्दी न उठिबे एवं सकाळ सकाळ जदि आपण सकाळ को मिस करी देबे ना एई जो परिवेश अछि ना सकाळ रे एई परिवेश त बहुत सुंदर सकाळ मु तो स्टूडियो भितरे बसी छि मु निहाती भाबरे बाहर रो जो परिवेश वर्तमान अछि ताको एन्जॉय करि परुनी किंतु आपण माने निहाती एन्जॉय करंतु आजिर एई हल्का फुल्का वर्षा पाग को बहुत खुशी रे सहित स्वागत करंतु मु जानि छि वर्षा हला माने काम को केमति जिबा एई टेंशन हम को हेइ जाय किंतु वर्षा हो खरा हो बा शीत हो आमको तो निज कम करने पड़ तेणुक आप निज कम पूरा प्रिपेयर हो जातु कहीं आपन को कम को जीवाक पड़ो जो मैंने घरे अच्छा से मैंने निजक प्रिपेयर करनी आज पूरा दिन गोटे पॉजिटिव थॉट सहित आज दिन में जदि कहार हापी बाला बर्थडे अच्छी कहार एनिवर्सरी अच्छी किसी भी खास कथा रही आज दिन में आपण आपण प्रियजन तेरे गोटे छोट मेसेज गोटे फोन कल ये सब करके पाखे अच्छा कि सरप्राइज प्लान करूँ आउ पूरा दिन टी स्पेशल कर दिंतु तेज श्रोता बंधु ये तो थिला आज सकाल मॉर्निंग अपडेट आग को अनेक गुड़े कार्यक्रम आपण मान बाकी अच्छी तेरे वर्तमान आपण मान रही संस्कृत संवाद जहाँ को आम रिले कर प्रचार कर आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र आसतु शुणा संस्कृत संवाद एवं जाणवा आज सका कौन सब खबर रही कौन सब हालचाल रही देश दुनिया निजक टिके अपडेट करवा आसतु शुणा वर्तमान संस्कृत संवाद रिले कर प्रचार आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र
1: समय सकाळ 6:55 मिनिट संस्कृत रे संवाद आकाशवाणी दिल्ली रो
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी अथ वार्ताः वियतनाम देशस्य फुक्वोक द्वीपस्य समीपे जातायाम स्पीड बोट इत्येतस्याम दुर्घटनायाम दिवंगतानाम पंचदश भारतीय

दिल है छोटा सा छोटी सी आशा आम छोट हृदय छोट छोट आशा भरी ही रही सब आशा जिते मिसी जाए ना गोटे बहुत बड़ा स्वप्न आम पूरण हो जाए। वेलकम बैक श्रोता बंधु ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो गर्ल से दिल तक मुयल अच्छी आपथी आज नुआ सका बर्षा भिजा सका सका सका बर्षा है मान हाँ निज कम धंदा को जीवाई असुविधा हो पाए कि भावत गरम रु आमको मुक्ति मिलिबो वर्षा हेले कित्ते सुंदर पाग हे जीव मते तो स्पेशली स्कूटी चलेबा बहुत पसंद वर्षा रे रेनकोट पिंधी के आपन को कोन पसंद किमती आपन वर्षा को एन्जॉय करंदी मु भाबु छे सकाळ गोटे कप गरमा गरम चाय आ बाहर होतबा वर्षा को आपन खूब एन्जॉय करथिबे। आज रे नुवा सकाळटी आपन को पाई खूब सुंदर हो खूब रिफ्रेशिंग हो सेति पाई आपन को मन को ही आपन को प्रथमे खुशी करबा को पड़िबो गोटे पॉजिटिव थिंकिंग गोटे सकारात्मक चिंताधारा आपण को सकाळ को बहुत सुंदर करि पारे आउ सेई सकारात्मक चिंताधारा आपण को मनरे हृदय रे आपण को उठरे खुशी भी आनी दे पारे तेबे निज उठरे आपण कर सेतबेले हस आसीबो जेतबेले आपण आउ कहा उठरे हस फुटेई पारिबे बा हस देई पारिबे। आज छोटे छोटे काम करंते ना आपण को पई जे पूरा लाइफ टाकु डेडिकेट करी छंती आपण घरे थिबा आपण कर मा हुवंतु आपण को भौणी हुवंतु बा आपण को स्त्री हुवंतु आपण कर पुओ झियो बा जो माने मते सुनु छंदी मोर श्रोता बंधु माने आपण निज हस्बैंड को पाई आपण को बापा मां को पाई किछ करंतु ना तांको उठरे हस फुटेबा पाई आज गोटे बढ़िया सकाळ रु गोटे सुंदर जंस करंतु गोटे फुलडे भी दे दियंतु ना किछि मीठा पदे कथा भी कहि दियंतु ना तांको उठरे हस आसी जीव आ देखिबे सेई हस आपण को केते खुशी दबा आपण को केते पॉजिटिव एनर्जी दबा आ गोटे नुवा सकाळ को आरंभ करिया पाई याठू भल चिंताधारा आउ कण चलंतु आम समस्त मिसी आज नुआ सकाळ को स्वागत करिबा कहीं वर्षा भी जाए नुआ सकाळ बहुत सुंदर आ सब गीत आहुरी भी सुंदर कर दउछी।

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम

0: जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। FB महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एकतरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर 83

0: डॉलर 30 सेंट प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौष्ठवतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौष्ठवतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमरीका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी

0: धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमरीका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India officially launches its campaign for election as non-permanent member of UN Security Council for 2028-29 term. Mortal remains of 15 Indian tourists killed in Vietnam boat tragedy arrive in Mumbai. Bodies of 9 fishermen recovered after the trawler sinks off West Bengal coast. U.S. launches strikes on Iran for the 3rd consecutive night. President Donald Trump reinstates blockade on Iranian shipping in Strait of Hormuz. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar and Odisha today. And in cricket, India script history at Lord's in London with 270-run win over England in one of women's test. India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council, UNSC, for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, the world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever.
3: as a candidate. It is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables

0: हे प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी।
1: अरे राजू भाई पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोरा एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी।

0: दिल को तेरी याद आए, तेरी याद आए तो छा गया मुझमें दीवानापन।
1: पूरा गीत टा गाई देबो ना कौन? हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो किए कहते साई पूरा गीत टा गाई देबार मूड रे अच्छा ना कौन? गीत बजाऊनी तुम गीत गायक शुणे दियो लिसनर मान को कौन कह मु आज गीत बजाऊनी तमे पूरा गीत टा फास्ट टू लास्ट जाए गायक आम लिसनर मान को शुणे दियो कौन कह अच्छा साई वर्षा होची से पड़े
0: हां जिप जिप आउची
1: केमती कौन एंजॉय करो वर्षा हेले
0: वर्षा हेले तो मते डर लगे काले थंडा बुडा आई जो आ जतले।

प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निजो छातो ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671819 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

शिल्पा सेट्टी का फिल्म माने पूरा सुपर हिट निजर अभिनय पाई से दर्शकों भल पाइबा सह अनेक पुरस्कार बाजीगर पाई से जी सिने अवार्ड धड़कन औ फिर मिलेगे फिल्म पाई फिल्म फेयर अवार्ड से सबुबले कहते दर्शकों भल पाइबा हिं सबुठ बड़य जर्नी आमको शिखाए टैलेंट सह हार्डवर्क रहिले सक्सेस निहाती मिलिबो साथी ये तो थिला शिल्पा सेठी को फिल्म जर्नी रो किछि सुंदर कथा तबे आज तो समय हे जाय छि कलाकार सो को एठे रखुजु पूरी नै आसिबी आउ जने कलाकार को कहानी को नै खास आउ खास अपन मन को पाई।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। टॉक भी ट्यून भी सबो किछि गोटी सोरी फुल एंड मस्ती फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली ऑन किछि कथा किछि गीतरे आ मु अछि मोनालिसा अपन मनक साथी रे आज हमें ढेर सारा कथा होबा गीत मथे सुनिबा किछि कथा किछि गीतरे अच्छा साथी कहिले जीवन रे स्वप्न नथिले केमती लागे हाँ जदि आम जीवन रे स्वप्न नथिबो ना तेबे आमको आगको बढ़िबाको इच्छा जमा भी हबनी आ संगीत संगीत तो नथिले मनर भावना को जमा भी रंग मिलेनी

0: ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे। पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345 718 रे जोगाजोग करंतु।

0: प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। वियतनाम के फोक वोक द्वीप के पास हुई स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कुनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है।

ईरान ने बहरीन जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े दो टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

이 모네리사 앞으로 만난 그 사태를 अनेक समय आम भाव खुशी हेपाई बड़ घर भल जब एम कण सब कि सतरे कौन से खुशी रहस्य अनेक अच्छा अल्पर खुशी खोजी नि कारण खुशी कौन सी कारण न थाए खुशी कारण है चिंताधारा पॉजिटिव थिंकिंग प्रिय लोकों कि समय बीतवा एवं किछि किछि छोट मोमेंट रे हसी खुशी पूरा माने फैमिली मान संगे लाइफ टा को एंजॉय करबा तेबे ए सब हैला खुशी रो गोटे छोट छोट उदाहरण तेबे साथी आपणकर सिक्रेट कौन खुशी रो तेबे आपण आपणकर मतामत पाई हमको मेसेज करंतु मेसेज करिया पें टाइप करंतु एफएमआरसी टिके स्पेस दे आपनको ना ठिकाना ओ मेसेज लिखी हमको पठे दियंतु 0949596321 नंबर को आउ हमो व्हाट्सएप नंबर टी हला 8895254200 तबे जल्दी जल्दी हमको आपन मानकर मनर कथा लिखी के पठे दियंतु सेते पर्यंत मु आपनको गोटे गीतरे सुनि देउछि तबे गीतरे सुनु थांतु आउ एन्जॉय करंतु

0: इसके बारे में क्या ख्याल है।
1: आमर परवर्ती कार्यक्रम ओडियारे संवाद एवं परे परे इंग्रजी एवं हिंदी रे संवाद रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी दिल्ली रो किछि क्षण मध्यरे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरु मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा

0: कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
3: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे

0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
1: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
2: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू की एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @यायार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात

प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानते कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671819 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटर दिल से दिल तक। वर्तमान सुनंदु प्रायोजित कार्यक्रम एन

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानिए कि यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता है। तो श्रोताओ, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
3: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है
2: जी।
3: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
2: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
3: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
2: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
3: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
2: जी,
3: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
2: जी जी जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे और फिर उस पर धातु की कील या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे
3: जी।
2: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
3: जी जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर
2: जी।
3: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थी।
2: बिल्कुल होती थी। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
3: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
2: जी,
3: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
2: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टैबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
3: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
2: जी,
3: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
2: युद्धों और विजयों का विवरण और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे जिनमें एपिक और

0: गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोता, आपको बता दें कि किलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने किलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोता, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये किलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं और वे आज भी हमें आज से 5000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: किलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
4: आह, क्या बात है
5: मैम।
4: हाँ बेटी,
5: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
5: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
5: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
6: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
7: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ

0: फैली हुई है।
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
6: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
7: धन्यवाद सर। साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की।

0: चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
0: जंगल के साथी।
3: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
4: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगा कर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका को

0: कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं उसका, कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
1: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
2: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश, एक खरगोश भाई, एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
2: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
2: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती। है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
2: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल

0: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
1: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
0: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
1: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है?

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक, दिल से दिल तक। सुंदर आफ्टरनून रे आपण समस्तंकु रेनबो रो अगणाकु स्वागत करछि। मो आपणको रेनबो साथी शुभश्री। सो फ्रेंड्स, केमिति अछंती? भलर अछंती तो, खुशी रे अछंती तो, आ सबटो इम्पोर्टेंट कथा, ए वर्षा भिजा पागो को एन्जॉय करछंती ना नै? आ ए वर्षा भिजा पागो को जेतेबेले जुड़ीदार पलटी जाय मीठा मीठा सुरी लागी तो और क्या ही कहना दोस्तों। आरंभ हो जाए शो सरला आफ्टरनून आ पहुंचुची किसी मीठा मीठा गीत आपण पाखे, किंतु गीत पहुंचा पूर्व जन दौर बड़ मान नमस्कार आ सान मान ढेर सारा प्यार ट्यून कर आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को फ्रिक्वेन्सी 110.4।

तक सदी जून को शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से तक वर्तमान शो चाली छी सुरीला आफ्टरनून आ मोचे अपन को रेनबो साथी शुभश्री आज अपन को सहित अच्छा साथी जानो दी आमी संग माने किछि दिन तळे एमती सडनली कथा होतुलो निजो निजो लाइफ बिसरे डिस्कशन करथुलो आउ सेई कथावार्ता भितरे मोर गोटे सांग मते सडनली पछारी देला जे अच्छा सांग कहता तो लाइफ रे हैप्पीनेस टा इम्पोर्टेंट ना सेल्फ सैटिस्फैक्शन टा इम्पोर्टेंट किछे समय टिके पॉज नहीं की टिके भले रे भाबिली आउ तापरे ताको आंसर देली जे ऑब्वियसली संग हैप्पीनेस टा तो समस्त को लाइफ रे इम्पोर्टेंट तो सेमती मो लाइफ रे भी हैप्पीनेस टा ही इम्पोर्टेंट ही रहबो तो से मो आंसर सुनी की पचारिला अच्छा मो जदि अभिघात ते पचारी जे सेल्फ सैटिस्फैक्शन आउ हैप्पीनेस भितरो कहा पल्ला तो लाइफ रे टिके बेसी माने कहार इम्पोर्टेंस टा तोर लाइफ रे टिके बेसी हबो से जगह रे तो कौन आंसर दबो तो मो आउ टिके गभीर चिंता रे पड़िली मो कहला रे लाइफ रे तो दीटा जको ही जरूरी सेल्फ सैटिस्फैक्शन भी जरूरी हैप्पीनेस भी जरूरी आ ता भितरे मो केमती कहा को चूज करि परिबे जे मोस्ट इम्पोर्टेंट की बोली तो मो कहली नाइ रे सांगो मो तो चूज करि परनी आ लाइफ रे दीटा जको ही इम्पोर्टेंट किंतु मु अल्टीमेटली से हैप्पीनेस ऑप्शन रे ही रहिली तो तापरे मो संग मते कहिला जे अच्छा मते कह त सेल्फ सैटिस्फैक्शन बिना हैप्पीनेस कोनो सतरे संभव

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार किए कहते कौट कल करते
1: संतोष मल्लिक रेडियो मास्टर महाकालपड़ा भरतपुर जिला जाजपुर कौन
0: आपन को बहुत बहुत स्वागत आज डायलिन लाइव चिटचाट को
1: नमस्कार
0: नमस्कार आज टॉपिक ऊपर कौन कहबे
1: मोर टॉपिक ऊपर कहिया पूर्वर मोर समस्त श्रोता भाई श्रोता भूणी मान को मोर अशेष अशेष धन्यवाद भगवान बहुत भल रखु मैम आपन को भी बहुत भगवान भल रखु आपन आज टॉपिक देखते से दिन आप फास्ट रोजगार जो कले जो से दिन क्या जो प्रश्न जो कर बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न था से दिन जो फास्ट मोर पैसा जो था पूरा मटी घर सब जहां आक फास्ट तापरे जो साल आसला घर काम लगे किसी पकईली मानते मटी घर करी बड़ा गोटा थी पकाए
0: अच्छा आपण ताहेले फर्स्ट सैलरी रो किछिटा सेव करिले किछिटा खर्च करिले
1: आज्ञा आज्ञा
0: आज्ञा बहुत ही सुंदर तबे अबिका जाय भी सेही नीति आपण होछंती किछिटा सेव करछंती किछिटा खर्च करछंती
1: वर्तमान तो मैम मोर तो आउ से माटी घड़ी नाही वर्तमान गोटा हमर अबे तो बहुत प्रकार माने भालानी वर्तमान ही पकारे गोटा कुपी आछि सेतरे मु आज जाके पैसा पकु
0: बहुत सुंदर सेविंग्स निहाती करबा दरकार लाइफ रे
1: आज्ञा आज्ञा आ तो गोटा वर्ष पूरा भांगी जाइली 5500 रखी
0: बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित कनेक्ट होते आते सुंदर निजर स्मृति आम सहित शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद रही नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो अपा शुभ संध्या नमस्कार
0: नमस्कार शुभ संध्या किए कहते कौट कल कर
1: टाटा स्टील प्लांट कहते आभासन
0: स्वागत कर आज डायलिन लाइव चिटचाट शो को
1: अपा बहुत बहुत धन्यवाद
0: आज टॉपिक उपरे आपनकर कोन मतामत रहिछि आपन जेतेबेले निजर फर्स्ट सैलरी पाइथिले ताको केमदि खर्च करथिले ना ताको सेव करथिले
1: नाही मु फर्स्ट सैलरी पाइथिल सतो किंतु राग बुडे रे सब पैसा को फर्स्ट पेमेंट पाइथिले 70000 रे तरु मु मम्मी की सब पैसा रागे रे धरथिले तरु कोन पाइन धरथिले जे मोरी जॉब मु पाइन ठीक नथिला मो डिलीवरी पके छिली प्लस भी एथिले मु पळे आस्थला ताठे पळे आस्थला
0: अच्छा
1: आउ

0: हेलो।
1: जय जगन्नाथ नमस्कार।
0: जय जगन्नाथ नमस्कार। किए कहते कौट कल करते
1: मुझे आपणकर भूतपूर्व कलर इंटरनेशनल कलर आरको नासार कलर राजेश नायक फ्रॉम चर्चिका बजार जगत सिंहपुर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करुछी आपनको आज डायल इन लाइव चिटचाट को आपन हम सहित कनेक्ट हेले सेथिपाई आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। तबे आज रो टॉपिक
1: समस्या अंतरजातीय हले आमे अंतरजातीय काय रहब आमे फॉरेनर रह गेलु
0: हो ताले कोन तो आज रो टॉपिक ऊपर आपनकर कोन मतामत
1: आउटे बढ़िया कथा जे मु वर्तमान मां तारा देवी को मंदिर रे अछि आप कॉलटा लागि जाई छी आउ आपनको भी मां सबले आपन घंट गोडी थांदु।
0: धन्यवाद।
1: उत्तर उत्तर उन्नति और मांग पर जनाऊँगी।
0: धन्यवाद। ताले कौन तो आज रो टॉपिक ऊपर है आपन अगर कौन मता मत
1: टॉपिक आंसर से भी जिल्टे धन्यवाद दे भी आज टॉपिक ऊपर कोई भी एक्चुअली बहुनी आमर हो जी सेल बिजनेस प्राइवेट बिजनेस आमर जॉब नहीं जे चाकरी कले हमें दरवा पाई वो इतना तो नहीं फिर भी मु तो हाई एजुकेटेड अच्छी कारण मोर गोटा जोड़ा जगह जॉब भी आसी लाच मांगे 4 लाख 5 लाख आज्ञा मिडिल क्लास फैमिली बापा आमर क्लरिकल थे आम जमबाड़ी बिकी दबू क्या दबू कौ वर्षा दबू जब तो करूनि तेना सेल्फ बिजनेस चलती रियल इस्टेट कम कैर गाड़ी फाइनान्स कैर फोर
0: व्हीलर सेल्फ बिजनेस फास्ट इनकम द्वारा जो इनकम आसी
1: फास्ट इनकम टाइम हाथ को आसा 25,000 मो भाग पड़ा 25,000 रु मु 10,000 रखी थी निज खर्च 10,000 घरे 5,000 ठाकुर खर्च लगे तेणु घर भी खुशी जाइए जहाँ पुओ मोर रोजगार एते वर्ष पर समस्ते भी खुशी जाइए तेणु एमती सुख दुख चली टाइप रर्तमान आम तो माउस एआडे आड़े जाऊ आकाउंट तो सुन हो जाऊत चली टाइप रगवान बरात जहाँ जमी चली कथ ना मनी इज स्वीटर दिन हनी पैसा देख तमाशा देख पैसा थे पकेट रे सब अच्छे ना कि नाई आ
0: निहाती निहाती आपण एमती इनकम टा आपणकर बढी बढी चालू आपण भलो वेरी इनकम करथांतु सेइटा ही आमे आशा रखुचु।
1: नै नै गोटिए कथा होजे मु सत ईमानदार इनकम करे चीटिंग बाजी फ्रॉड करे भगवान मते भले रखिथेंती
0: सेमती भले रे थांतु आमे सहित कनेक्ट हेकी रहिथांतु रहिली नमस्कार।
1: जय जगन्नाथ।
0: साथी आपण मानक सहित कथा बार्ता एमती जारी रहिबो किंतु वर्तमान गोटे छोटो म्यूजिकल ब्रेक।

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार शुभ संध्या किए कहते कौट कल करते
1: भल लगे तो कथा भल लगे तो कथा जब तो हुए देखा मिलन इलाक तु अटो निशी पद्मा मु अटे तो देवता रही सब जुग को परा रही सब जुग को परा केदार गौरी प्रेम परी आम प्रेम रही चीर अमर परा साक्षी रही साक्षी रही बेलाभूमि कोणार्क चंद्रभागा नमस्कार एंड गुड इवनिंग गोपपुर निश्चिंत कहली कटक रु चंद्रकांत सुस्ती
0: स्वागत कर
1: आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद
0: आज टॉपिक ऊपर कौन रहबो निजर मतामत
1: निश्चिंत मु एदले फर्स्ट धरम बाइतले जाइतली हरियाणा को काम करे पई ओडिसा बाहर को आ मु मास को बाउतले जा 1200 टका
0: अच्छा
1: तो सेई 1200 टका रे मु मा पई गोटे साड़ी आन देले आउ टोटली सेई पैसा रे साड़ी गोटे ने आसले आउ कहली साड़ी तार बाकी पैसा तो सेमि तो पैसा चाहि देले मु खर्च कर दै छथि किने गोले साड़ी किन देले बहुत जा मा बहुत खुशी होबो
0: चप्पल
1: आनि गंजी आउट मानते पैंट कपड़ा आनि निज ड्रेस कर
0: बहुत बढ़िया लगला आपन को सहित कथा हे तबे बहुत बहुत धन्यवाद आपन हम सहित कनेक्ट हेतिले रहली नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या।
1: मु साई कहूँ बेलपड़ू।
0: स्वागत करुच्छी आज डायली लाइव चिट चैट को।
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, आज टॉपिक उपरे कौन रहिबो मतामत?
1: आमर तो निजर दुकान ने मु काम करुच्छी। आमर मो जेजे जेजे करथले, तापरे बापा करथले, बापा सहित मु मिसिकर तांको साहाज्य करुच्छी। आउ जो नमो आम दुकान को फास्ट जाइथिली तो बापा मते 100 टका देथिले, तो सेई 100 टका रे मु समस्त पे मीठा आनथिली, कैना सेईटा मते लागला मोर फास्ट इनकम, तो मु समस्त पे मीठा आनथिली।
0: अच्छा, आउ तापरे जेतेबेले निजे दुकान रे काम कला परे निज हाथ को जेतेबेले फर्स्ट टाइम पैसा आसिला, बापा देई नथिबे जोटा, सेतेबेले से खुशीटा से जो बापा जो दिन फर्स्ट पैसा देथिले ता संगरे कंपेयर करिला बेळकु दीटा जकर सेम ही फीलिंग्स थिला ना टिके 19-20 थिला?
1: ना टिके 19-20 थिला, काई ना सेतेबेले माने निजे एबे जो काम सब करूची आ तो पैसा देला आछी, बहुत खुशी लागुची।
0: अच्छा,
1: आ हमर तो सेमति कहया गले मोर काम होची खाली ओजन करिवा।
0: अच्छा,
1: आ पैसा रखिवा हेडा बापांगरो काम, आ मते जा पॉकेट मनी मिले मासु मासु सेडा जाडो मोर।
0: अच्छा, ताले पॉकेट मनी ता ताले निजरो इनकम?
1: आज्ञा, मु जते बड हेले भी मते सही पॉकेट मनी ही मिलतो।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाहो आम सहित कनेक्ट होते आप, बहुत भल लगे कथा है कि रही।
1: धन्यवाद दीदी, रही। नमस्कार।
0: नमस्कार। साथी आपण भी जणे परबे निजरो जेबे फर्स्ट सैलरी आपण को हाथ रे आसी थिला ताकू आपण नी कोन करथिले, ताकू खर्च करथिले ना ताकू सेव करथिले? आम सहित कनेक्ट हे परबे, नंबर होची 0671230353। हेलो।
2: हेलो मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, शुभ संध्या। के कहथिले, कोड कॉल करथिले? स्वागत लाइव चिट चैट को।
2: हाँ
0: मैडम,
2: धन्यवाद।
0: अच्छा, आपण को आडे
2: वर्षा होची? फास्ट सैलरी प्राय 5-6 मास पर मिलला हमको, मासको 3000 लेखा मिलियार 2008 मसीह।

0: हेलो
1: नमस्कार शुभ संध्या कि कहते कौट कल करते
0: हेलो
1: हेलो सुना जाऊ
0: वॉइस किसी आसुनी मैडम
1: हेलो हेलो

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार शुभ संध्या किए कहते कौट कल कहते
1: सुरेन्द्र पात्र कहते बैतरणी रोड जाजपुर
0: आज्ञा स्वागत कर डायल इन लाइफ को
1: धन्यवाद से कल कर लगुनि जमा
0: निहाती आम साथी बंधु माने धन्यवाद कनेक्ट
1: कॉल कॉल फांका तो काम समय समय जो बिजी देखे मोबाइल
0: अच्छा
1: दरमा मिले हाथ मिले प्रथम दरमा कथा कहूँ मत खुशी लगी मान मुझे मोर दरमा मिलवा तारीख टा दि दिन आगर मुझ सब प्लान करी चार पांच दिन आगर मिले मुझे मिलला सब खर्च कर दे पूरा हाथ खाली कर
0: देवी
1: निज जो जगह जी कर्म कर बाट खर्च निज व्यक्तिगत पकेट खर्च सबकि रखिकीपर पर मान बाप मा कि जी रही भाई रही कि मो भाउज रही किसी देवी मैं जिन किणी मोर प्रथम दरमारे मुझे खुशी लगला मत लगला निज गोड़े निजे ढाई
0: अच्छा
1: जो निजे मागे पैसा नहीं जो कि डर लगे किदेवी क्या से कहीदेव जे तू कहीं टाइम करदेलु कहीं ये फेरेलु आ पैसा कहीं पैसा जो चिट्ठा टा जो मागे निज व्यक्तिगत पैसा निजे कि जना पड़ोनी हाँ मो पैसा मुझे जहाँ चाहिए किणी मत किए किसी कह स्वाधीनता केवल दरमा रू
0: हाँ
1: हाथ में मिले सैलरी कथ
0: समय सरी सरी आसुच आउ बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तार।

0: ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାଷ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ ଐକ୍ୟତାର ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ବାନ୍ମୟ ପରିପ୍ରକାଶ
1: ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ସକାଳ 7:30 ରଥଟଣା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ ଯୋଗେ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶୀ ଧାରା ବିବରଣୀ।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

श्री रामचरितमानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिलाखंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

0: आयोजित सांबादिक सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती परिडा आनुष्ठानिक भाव वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना 2026-27 मार्गदर्शिका उन्मोचन कर गणमाध्यम को संबोधन कर श्रीमती परिडा कहते एहि योजना मध्यम वरिष्ठ नागरिकों सम्मान सुरक्षा एवं सरकारी सहायता सहित देशर विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थल भ्रमण करावाई सरकार प्रतिश्रतिबद्ध
1: 25 जन एक्सकर्ट अफिसर जिबे एवं जो मान को 70 रु 75 वर्ष हेथिव से मानक सहित जने सहयोगी जहां को 18 वर्ष रु ऊर्ध हेथिव ए जो आरंभ तारीख बुक करिवे बा ऑनलाइन रो आवेदन हबो एठी आसंता काली ठु आरंभ हबो 15/7/2026 रु सरीब 14/8/2026
0: सूचनाजोग्य योजना अधीन एपर्यंत 45,000 ऊर्ध्व वरिष्ठ नागरिक देशर विभिन्न प्रसिद्ध तीर्थस्थल दर्शन करिछन्ति। योजना रे आवेदन प्रक्रिया आसंताकालीठारु आरंभ होई अगस्त मास 14 तारीख पर्यंत चलिबो। भुवनेश्वर स्थित लोकभवन अभिषेक हल ठारे राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपटी 2023 ब्याचर ओडिशा प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षार्थी सहित भाव विनिमय करिछन्ति। एही अवसर में प्रशिक्षार्थी केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनागुड़िक संपर्क में ज्ञान अर्जन कर सरकार और नागरिकों मध्य एक सेतु भाव कार्य कर उन्नत सेवा प्रदान करने को राज्यपाल कहते। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रार आयोजन पर ट्राफिक सुपरिचालना उपरे गुरुत्व दिया कड़ा व्यवस्था करा जायछि। 6 नुआ पार्किंग स्थली को मिसाई मोट 30 पार्किंग स्थान करा जायछि। सेथिमध्यरु 3 स्थान रे ड्रोन द्वारा ट्राफिक गतिविधि उपरे तीक्ष्ण नजर रखाजिबो। पुरी जिला प्रशासन ट्राफिक पुलिस पक्षरु स्वतंत्र आप ट्राफिक कंट्रोल रूम सीसीटीवी क्यमेरा चैटबॉट रो व्यवस्था करा जायछि। चलित वर्ष रथयात्रा रे प्रजुक्ति आधारित ट्राफिक परिचालना को सर्वाधिक गुरुत्व दिया जायछि। सही भली भक्तों सहायता पई 73 ट्राफिक एड पोस्ट स्थापन करा जायछि। संबलपुर जिलापालंक सम्मेलनी कक्षरे राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतारे एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइजैछि। एथिरे मंत्री जिलार विकासमूलक विभिन्न कार्यक्रम और राजस्व सेवार अग्रगति संपर्क में समीक्षा करथिले। वसुंधरा योजना रे पट्टा आवंटन कार्य शेष पर्यायर पहुंचितबा बेले विद्यालय और कलेजगुडी को पट्टा देबा कार्य त्वरित गतिरे आगै चलिछि। डिसेम्बर मास शेष सुद्धा जिल्लार समस्त शिक्षानुष्ठानगुडिकर निजस्व जमीपटा रहिबो बोली मंत्री श्री पुजारी कहिछन्ति। आपण माने आंचलिक संवाद सुनिछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो। पुरी श्रीमंदिरे आज नेत्रोत्सवरे महाप्रभु श्रद्धालुंक नवजौवन बेशरे दर्शन देउछन्ति। चलित वर्ष नीतिबहुल रहिथिबारु दर्शन सामान्य विलंब होइथिला। परंपरा अनुसारे प्रथमे झुण बाहरिबा परे श्रीनगरकु खडीप्रसाद विजयनीति अनुष्ठित होइथिला। दैतापति सेवक माने घंटा घंटा छत्रीसह वैजयंती ओ विजय कहाळी बजाई श्रीमंदिररु बाहरिथिले। समस्त सेवक माने रूपाथाळी रे महाप्रभुंक दिव्य द्रव्य सबकु धरी विजय करिथिले। महाप्रभु संपूर्ण सुस्थ ओ रथयात्रा पई बाहरिबे बोली गजपति महाराजंकु अवगत कराइथिले। गजपति महाराज सेवक मानंक ठारु प्रभुंक प्रसाद ग्रहण करिबा परे रथयात्रार भव्य आयोजन नै आलोचना करिथिले। आसंता काली प्रतिपदा तिथिरे श्रीजीवंक उभयात्रा अनुष्ठित हेबो। गुरुवार दिन सिगुंडीचाकु दृष्टिरे रखी आसंता काली सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिथिबा नै श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु नयागढ़ जिला रणपुर खंडपड़ा दशपल्ला भापुर गणिया राजसुनाखला शरणकुला आदि विभिन्न जगन्नाथ मंदिर में आज पवित्र नेत्रोत्सव अवसर में नवजौवन बेश अनुष्ठित हो प्रत्युषु जयमंगला आलती नीति स्नान न्यास मणोही वर्तमान साहण मेला भक्त माने चतुर्धामूर्ति दर्शन कर सुवर्णपुर जिल्लार पाताली श्रीक्षेत्र समेत समस्त जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु नवजौवन बेश अनुष्ठित होइछि। आसंता गुरुवार दिन जिल्लार हेबाकु थिबा रथयात्रा पई समस्त प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंचिछि। बौद्ध जिल्लार पाताली श्रीक्षेत्र नायकपड़ा गुंफा ठिडिकाजोर नारायण नगर मनमुंडा पुरुणा कटक बुटुपाली कंटामाळ जगती समेत विभिन्न अंचल जगन्नाथ मंदिर में नीति ठाकुर नवजौवन बेश दर्शन पई बहु श्रद्धालु समागम होइछि। तुलसी क्षेत्र केन्द्रापड़ार आराध्य देवता श्री बलदेवजी पवित्र नेत्रोत्सव एवं नवजौवन बेश देवनीति आध्यात्मिक परिवेश मध्यरे होइजैछि। रथयात्रा पई महाराणा सेवकों द्वारा ब्रह्मतालध्वज रथ निर्माण शेष पर्यायर पहुंचिछि। राज्यर प्रथमरु अष्टम श्रेणी विद्यालय पाठ्यपुस्तक त्रुटि मामलें राज्य शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं शिक्षा गवेषणा प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी पूर्वतन निर्देशक କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ओडीएफ से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है. सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म. फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है.
1: श्री वैष्णव कहिछन्ति कंटेनर माध्यमरे एणिकि सार परिवहन को अनुमति प्रदान करा जिवो. देशव्यापी सार परिवहन क्षेत्रे रेलवायर 85% अंश रहिछि. कंटेनर परिचालना सहज एवं प्रदूषण मुक्त व्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करिथाय बोली श्री वैष्णव कहिछन्ति. वागन प्रस्तुति नै डिजाइन रो किंबा ए क्षेत्र रो निर्माता सरकार को प्रस्ताव देई परिबे बोली मंत्री श्री वैष्णव सूचना दैछन्ति. पश्चिम एशिया परिस्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखाई बोली केन्द्र सरकार कहिछन्ति. नूआदिल्ली में आज गणमाध्यम को सूचना दी वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहिछन्ति हरमुज प्रणाली दे निरापद एवं अबाध जहाज चलाचल को भारत समर्थन करे. श्री जयसवाल कहिछन्ति हरमुज प्रणाली दे यात्रा करथबा दुईटी पण्यवाही जहाज एमटी अलबहिया एवं एमटी मोम्बासा उपरे होइथिबा आक्रमण नै भारत चिंता प्रकट करिछि. ईरान रो डेप्युटी चीफ ऑफ मिशन को समन जारी करा जिबा से कहिछन्ति. एहि घटना रे जने भारतीयंकर प्राणहानि हेबा सह अनेक भारतीय नागरिक आहत होइछन्ति बोली श्री जयसवाल कहिछन्ति. सेमानक मध्यरु केते जणंकर अवस्था गुरुतर रहिछि. एहि प्रसंगरे भारत दृढ़ निंदा प्रकाश करिबा सह यथाशीघ्र आक्रमण बंद करिबा उचित बोली से कहिछन्ति. उत्तेजना ह्रास करिबा सहित उभय पक्ष मध्यरे आलोचना उपरे श्री जयसवाल गुरुत्व प्रदान करिछन्ति.
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं. हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है. और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है.
1: पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर दे श्री जयसवाल कहिछन्ति स्थानीय अधिवासी वैध अभियोग को समाधान करने परिवर्ते पाकिस्तानी सुरक्षा बाहिनी सेमानंको उपरे बल प्रयोग करुछि. एहा एक अत्यंत दुखद घटना. आंतर्जातिक संप्रदाय एभली पदक्षेप पई पाकिस्तान को संपूर्ण दायी करिवो बोली से आशा व्यक्त करिछन्ति. एहि अवसर में श्री जयसवाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग दक्षिण चीन सागर प्रसंग एवं कानाडा निजर प्रसंगरे केतक प्रश्न उपरे भारतर दृष्टिकोण उपस्थापन करिछन्ति. आपण माने संवाद सुनछन्ति आकाशवाणीरो. चलित आर्थिक वर्षर ए पर्यंत 7,73,000 कोटी टंकारु अधिक प्रत्यक्ष टिकस संग्रह करा जायछि. आयकर विभाग देइथिबा सूचना अनुयायी गत आर्थिक वर्ष तुलनारे ए क्षेत्र रे 16.11% वृद्धि पाइछि. चलित वर्षर संग्रहित टिकस मध्यरे 3,35,000 कोटीरु अधिक कॉर्पोरेट टिकस एवं 4,11,000 कोटी टंका अणकॉर्पोरेट टिकस अंतर्भुक्त. ए पर्यंत विभाग पक्षरु 1,22,000 कोटी टंकारु अधिक राशि फेरस्त करा जाय सारिछि. मोट प्रत्यक्ष टिकस संग्रह 16% अधिक अभिवृद्धि घटी 6,51,000 कोटी टंकारु ऊर्ध्व राशि संग्रह करा जायछि. भारत मालदीप मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा नहीं प्रथम पर्याय आलोचना सफलतार सह शेष होईछि. गत सप्ताह रे एही आलोचना आभासी माध्यम रे अनुष्ठित होइतला. वाणिज्य और शिल्प मंत्रालय ए संपर्क रे सूचना दे कहिछि उभय पक्ष मध्यरे एही आलोचना सकारात्मक रहिछि. विभिन्न क्षेत्र रे दुई देश सेमानंकर सहमति प्रकाश करथिबा मंत्रालय कहिछि. द्विपाक्षिक वाणिज्य एवं निवेश संपर्क को एहा अधिक व्यापक करिवो. भारत मालदीप रो द्वितीय सर्वबृहत वाणिज्यिक अंशीदार. गत आर्थिक वर्ष रे दुई देश मध्यरे वाणिज्य कारबार 771 नियुत अमेरिकी डॉलर रु अधिक रहिथला. 2024-25 आर्थिक वर्ष तुलनारे एहा 13.54% अधिक. प्रस्तावित द्विपाक्षिक मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा बजार प्रवेश को अधिक व्यापक करिबा सह सहज निवेश एवं द्विपाक्षिक आर्थिक सहयोग को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करिवो बोली मंत्रालय कहिछि. ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡାକ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ବ୍ୟବସାୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ତୁଳନାରେ ମୋଟ କାରବାର 22% ଅଧିକ ହୋଇଛି।

जुदा नहीं होते, यूं हम किसी पे फिदा नहीं होते। प्यार से बड़ा रिश्ता दोस्ती का, क्योंकि दोस्त कभी बेवफा नहीं होते। तो मेरे साथी बनी टुना भाई ना, रमेश भाई, मुन्ना भाई, उर्मिला अपा आमर सब श्रोता बंधु मान जनई गुड इवनिंग। साथी मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपड़ एम सहित कनेक्ट ही रही था। आप कनेक्ट हो सब श्रोता बंधु मान जो निजर एत सारा भल पाइबा बांटुचं समस्त सहित कनेक्ट ही रोचे समस्त निजर गुड विशेष जनाऊँ से आम तरफ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद।

ତେଣୁ ବଡିର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମର ଆଗ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। जंक फूड सहित जो फ्रेंडशिप आपने बनई से फ्रेंडशिप को आग टिके टिके करी कमे चेष्टा कर सकाल उठवा पर प्रथम दिन आरंभ करंतु गिलासे नख उषुम पानी जहाँ मो बडी सब टॉक्सिक एलिमेंट को बडी मध्य बडी भितर बाहर करिबारे हेल्प कर साथी जितेबेले खाइबा खाउछंती इच मील आपण जितेबेले कंज्यूम करूछंती चेष्टा करंतु से मील रे आपण भरपूर मात्रा रे संतुलित आहार नेकी आपण से मील टिको कंप्लीट करबे।

0: ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ତେଲ ସି ତେଲ ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यूएनसीएल

0: ऊपर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और ये फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा

0: बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
1: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
2: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
3: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं।

प्रिय टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छत ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671 किमा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मुं लहरिका पट्टनायक। फ्लाईएश्र सुरक्षित तथा प्रदूषण ह्रास जनित रेल परिवहन नै स्वतंत्र कंटेनर प्रस्तुत होइछि बोली कहिले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव। खोला रेल वागन परिवर्ते एणिकि कंटेनर माध्यम परिवहन कराजिबो फ्लाईएश। आंध्रप्रदेश एवं तमिलनाडु में कोविड 19 को दृष्टि रखि आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में समीक्षा बैठक आयोजित। राज्य सरकार कोविड परिस्थितिर मुकाबला संपूर्ण सजग बोली कहिले स्वास्थ्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग। कटक लोकार्पित होला राज्यर सर्वबृहत विश्वनाथ पंडित केन्द्रीय पाठागार। मुख्य अतिथि भाव जोगदे स्मार्ट लाइब्रेरी को उद्घाटन कले राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजनार मार्गदर्शिका उन्मोचन कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। कहिले योजना माध्यम वरिष्ठ नागरिकों सम्मान सुरक्षा एवं सरकारी सहायता सहित देशर विभिन्न पवित्र धार्मिक स्थली भ्रमण करने सरकार प्रतिश्रतिबद्ध। श्रीक्षेत्र नवजौवन बेश श्रद्धालु दर्शन दे चतुर्धामूर्ति। आसंता प्रतिपदा तिथि अनुषित हो श्रीजीवं उभाजात्रा। गुरुवार श्रीगुंडीचा जात्रा को दृष्टि रखि आसंता सर्वसाधारण दर्शन बंद रही श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष सूचना। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा आयोजन ट्राफिक सुपरिचा उप गुरुत्व। छटी नुआ पार्किंग स्थल को मिशाई कर मोट 30 पार्किंग स्थान। भक्तों सहायता स्थापन कर 73 ट्राफिक एड पोस्ट। लगाण वर्षा जो आसंता भद्रक जिले सब् स्कूल छुट्टी नहीं घोषणा कले जिलापाल। घूर्णिवलय प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में लागि रही वर्षा। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा नहीं 13 जिला पाणीपाग केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी। समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी समुद्र मध्य बारण। मुख्य संवाद वर्तमान परवर्ती मुख्य संवाद शुणिपारे राति 11:05।

अनिल गौरव मानसी कविता अरोरा फैमिली गांधीनगर न्यू दिल्ली मोतीनगर रु सुनिबा को चाहिसंती सुनिधि चौहान एवं सोनू निगम का कंठ रे गोटे सुंदर गीतटी नेक्स्ट मेसेज टी करिसंती आभासेन राजकुमार भरद्वाज विमल श्रीवास्तव मनीष शर्मा राजदीप राय रुचिका राय करण सेन रोहित सेन दीपक कुमार अशोक कुमार टाटा स्टील प्लांट रु एवं ए मेसेज टी करिसंती जमशेदपुर झारखंड रु देवेन्द्र तांती राकेश तांती प्रकाश निशा कुमारी रेशमा कुमारी दीपाली कुमारी एवं देवेन जी

0: আমার পরবর্তী কার্যক্রম হিন্দি সমাচার টেলিকরি প্রচার করছো আকাশবাণী দিল্লি।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে রত্না পান্ডে। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जल डमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमिनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल

0: में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अपन माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
2: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार राज्य क्याबिनेट बैठक अनुषित 7 विभाग 13 प्रस्ताव को अनुमोदन। ग्राम्य उन्नयन विभाग सर्वाधिक 7 प्रस्ताव को अनुमोदन मिलता सूचना। भुवनेश्वरस्थित लोकभवन में 2023 ब्याच्र ओडिशा प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षार्थी सहित भाव विनिमय कले राज्यपाल डॉ हरिबाबू कम्भम पाटी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजना संपर्क में ज्ञान अर्जन कर सरकार और नागरिकों मध्य सेतु भाव उन्नत सेवा प्रदान करने को दे परामर्श। आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में कोविड 19 को दृष्टि रखि आज भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में समीक्षा बैठक आयोजित। राज्य सरकार कोविड परिस्थितिर मुकाबला संपूर्ण सजग बोली कहले स्वास्थ्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग। कटक लोकार्पित है राज्यर सर्वबृहत विश्वनाथ पंडित केन्द्रीय पाठागार। मुख्य अतिथि भाव जोगद स्मार्ट लाइब्रेरी को उद्घाटन कले राज्य गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉ कृष्णचंद्र महापात्र। 3 एकर जमीन में 42 कोटी टंका खर्च में निर्माण बृहत प्रकल्प। गुरुडीहाटियाठारे 5 एकर जमीन होगा गोशाला भित्तिप्रस्तर स्थापन कले मंत्री। श्रीक्षेत्र नवजौवन बेश श्रद्धा दर्शन देले चतुर्धा मूर्ति। आसंता प्रतिपदा तिथि अनुषित हो श्रीजीवों उभाजात्रा। गुरुवार श्रीगुंडीचा जात्रा को दृष्टि रखि आसंता सर्वसाधारण दर्शन बंद रही श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष सूचना। विश्वप्रसिद्ध रथयात्रार आयोजन ट्राफिक सुपरिचालन उपर गुरुत्व। 6 नुआ पार्किंग स्थल को मिसाई करा मोट 30 पार्किंग स्थान। भक्तों सहायता पर स्थापन कर 73 ट्राफिक एयरपोस्ट। लगाण वर्षा जो आसंता भद्रक जिले में सब स्कूल छुट्टी नहीं घोषणा कले जिलापाल। घूर्णिवलय प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में लगि रही वर्षा। आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा नहीं 13 जिला को पाणीपाग केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी। समुद्र अशांत रह मत्स्यजीवी मान समुद्र मध्यक जावाक बारण। मुख्य संवाद आज शुभरात्रि नमस्कार।

जय जगन्नाथ सुनुंच आपण शहे दशमिक चार आकाशवाणी एफ एम रेनबो काटक दलसे दल तक देवमित्र अच्छे आपण सहित भावभक्ति भरा कार्यक्रम अर्घ्य थाली को महाप्रभु श्री जगन्नाथ को मोर अंतर प्रणाम। हाँ आज आम कौन से पुस्तक कहानी कहूने आम हृदय बसी श्री कालिया सांत कहानी शुणा। हाँ से प्रभु जी मंदिर छाड़ी भक्त पाखक आसती बहुत वर्ष पूर्वर पुरीर श्रीमंदिर प्रतिदिन हजार हजार भक्त प्रभु दर्शन करुले किंतु केतेक लोक थिले जो माने वृद्ध थिले जो माने असुस्थ थिले जो माने दूर देशर आसुथिले से माने भावुथिले आमे केबे जगन्नाथ को देखि पारिबु

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागी जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोडी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: passare bene.
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी,
0: बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति। सतरे भाई?
1: हां भाई, मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा बना।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सकेंगे? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

दोनों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है

अन्य मानंकु नुहे बरं गतकालीर निजकु अतिक्रम करिबा हि जीवनर प्रकृत सफलता अटे। भल चिंता भल काम आउ भल धैर्य ए तीनोटी आम जीवन को सुंदर करिबारे आमको सहाय्य करिथाए। श्रोता बंधु नमस्कार, स्वागत करुछि आपण मानंकु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटकतल से तिल तक। कतार रो पूर्व फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी 74 वर्ष वयसरे वियोग घटिछि, तेणु तांकर निधन रे भारत सरकारंक पक्षरु आज दिनटिकु समग्र देशरे राष्ट्रीय शोक भावरे घोषणा करा जायछि। आमे मध्य शोक रे अछु एवं आज आमर प्रत्येक कार्यक्रम यही शोक पालन रे ही बीतिबो एवं तांकु ही उत्सर्गीकृत।

टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671819 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in

0: हे प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी
1: अरे राजू भाई पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोरा एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलर लगे देलिनी
0: बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति सतरे भाई
1: हां भाई मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नाही
2: आज्ञा हां आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345 718 रे जोगाजोग करंतु।

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक मु आपन को कोयल आपन मान का साथी रे अछि स्टूडियो घड़ी रे समय वर्तमान दिन 12 बजे 1 मिनट हे सलानी आ आपन माने सुनु छंती सुंदर सुंदर गीत केवल एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे श्रोता बंधु गीत प्रत्येक मुहूर्त रे हम साथी रे थाए जीवन रे सुख हो दुख हो हस हो लोह हो कोनसे सेलिब्रेशन हो बा जी कोनसे परिस्थिति हो गीत हमको आगो को बढिबारे प्रेरणा भी देई थाए गीत हमको दुखर साथी मध्य हे थाए तेबे आज आमी शोक पालन करू छे आ ए शोक रे मध्य गीत हमर साथी हे छी गीत रे अनेक गुडीय माधुरता अछि गीत भितरे लुचि रही छी अनेक किछि कथा गीत केतबले मनर कथा को आउ जणक पाखरे पहुचे बारे सहाय्य करे तो गीत केतबले निज मनर खुशी को आहुरी चारिगुणा करि दे पारे गीत केतबले कहे आम सुंदर प्रकृति रा कथा तो गीत केतबले कहे आम मनर व्यथा चलंतु एमिति सुंदर सुंदर गीत को सेलिब्रेट करिबा एमिति सुंदर सुंदर गीत को सुनिबा एमिति सुंदर सुंदर गीत को निज जीवन गोटे अंग भाव आम निज पाखरे रखिबा।

श्रोता बंधु शुणुछन्ती आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कठक दिल सी दिल तक गीत अमर बंधु जीवनर गोटे सुंदर बंधु कहले चलिब कारण मनर दुख को प्रकाश करिबारे गीतर भूमिका अतुलनीय हे पारे गीत केवल सुर आ शब्दर समाहार नुहे बरंग आम हृदयर गभीर अनुभूतिर गोटे सुंदर स्वर कहले चलिब गीत आम दुख को सहिबार शक्ति आमको देइथाए गीत पुणि नुआ स्वप्न सहित आम दुनिया को सजेइथाए गीत रे दुख भी अछि तो सुख भी अछि प्रत्येक मुहूर्तर साथी हेउछि गीत आम पाई

प्रियो टीपी एनओडीएल बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतार मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निज छात ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 1800345671819 किबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका

0: पर आपका विषय उत्कृष्ट था प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है चरण दर चरण समझाने का तरीका सिलिका क्या है यह सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहां होता है साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद
0: आगे आप लिखते हैं सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का वो लिखते हैं
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है हम तो नियमित श्रोता हैं आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने अर्चना ताई गोंडाने हीरामण शेंडे जी प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस वर्मा निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की
0: तो श्रोताओं हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों
1: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं
0: जी और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है कुछ पेड़ पौधों में फूल आने पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
0: जी हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़
0: जी अश्वता हमारा अंतिम प्रश्न था हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है कोई दो उदाहरण दीजिए
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है
0: जी तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अब सुनिए आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं इंस्टा फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है
2: अरे भागो भागो वो देखो
3: हमारे घर के सारे सामान बह गया
4: हमारे खेतों में पानी भर गया सारी फसल
5: सारी फसल बह गई
6: साथियों नमस्कार आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं तो चलिए हम आपको

0: बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
1: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
2: हाँ, सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
1: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
0: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
3: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
0: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
4: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
0: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
1: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
2: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते,
5: उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कर...